0: हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब पहुंचा कर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुदा को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं उससे बेजार हूं।
1: मिन दूनही फकीदूनी जमीअन थुम ला तुंज़िरून,
0: यानी जिनकी खुदा के सिवा इबादत करते हो तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो।
1: इन्नी तवक्कलतु अला अल्लाह।

मैं खुदा पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो इसको चोटी से पकड़े हुए है, बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है।

उन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो न करें? तुम तो बड़े नर्म दिल और रास्तबाज हो।

0: तो यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे।
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ

उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे होशों में ही रहने दो।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आज़मीन हिजरत का इल्म हो जाने की सूरत में इनके साथ मुशरिकीन जो सलूक करते थे उसके ये तीन नमूने हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग आगे पीछे पै दर पै निकलते ही रहे। चुनाचे बैत अकबा कुबरा के सिर्फ दो माह चंद दिन बाद मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के अलावा कुछ ऐसे मुसलमान जरूर रह गए थे जिन्हें मुशरिकीन ने जबरदस्ती रोक रखा था। इन दोनों हजरात हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना साजो सामान तैयार करके रवानगी के लिए हुक्म खुदावंदी का इंतजार कर रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का रख्त सफर भी बंधा हुआ था। सही बुखारी में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारा मकाम हिजरत दिखलाया गया है। ये लावे की दो पहाड़ियों के दरमियान वाके एक निखलिस्तानी इलाका है। इसके बाद लोगों ने मदीने की जानिब हिजरत की। आम मुहाजरीन हबशा भी मदीना ही आ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सफरे मदीना के लिए साजो सामान तैयार कर लिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जरा रुके रहो क्योंकि तवक्को है मुझे भी इजाजत दे दी जाएगी। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इसकी उम्मीद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु रुके रहे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ सफर करें। उनके पास दो ऊँटनियाँ थी, उन्हें भी चार माह तक बबूल के पत्तों का खूब चारा खिलाया। जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन तैयार होकर निकल गए और बाल बच्चों और मालो दौलत को लात फांद कर ओसो खजरज के इलाके में जा पहुंचे, तो उनमें बड़ा कोहराम मचा, गमो अलम के लावे फूट पड़े और इन्हें ऐसा रंजो कलक हुआ कि इससे कभी साबका न पड़ा था। अब उनके सामने एक ऐसा अजीम और हकीकी खतरा मुजस्सम हो चुका था जो उनकी बुत परस्ताना और इक्तसादी इज्तमाईत के लिए चैलेंज था। मुशरिकीन को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल कयादत और रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जा कुव्वत तासीर मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कैसी अजीमत और इस्तकामत और कैसा जज्बा और फिदाकारी पाया जाता है। फिर ओसो खजरज के कबाइल में किस कदर कुव्वत और कुदरत और जंगी सलाहियत है और उन दोनों कबाइल के इखला में सुलह और सफाई के कैसे जज्बात हैं और वो कई बरस तक खाना जंगी की तलखियां चखने के बाद अब बाहमी रंजो अदावत को खत्म करने पर किस कदर आमादा हैं। उन्हें इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहर अहमर के साहिल से इनकी जो तजारती शहरा गुजरती है, उन्हें इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहरा हमर के साहिल से उनकी जो तजारती शहरा गुजरती है, उस शहरा के एतबार से मदीना फौजी अहमियत के किस कदर हसास और नाजुक मकाम पर वाके है। दरा हलीका मुल्क शाम से सिर्फ मक्का वालों की सालाना तजारत 2.5 लाख दिनार सोने की तनासुब से हुआ करती थी। अहले ताइफ वगैरह की तजारत इसके अलावा थी और मालूम है इस तजारत का सारा दारोमदार इस पर था कि ये रास्ता पुरअमन रहे। इन तफसीलात से बखूबी अंदाजा हो सकता है कि यसरब में इस्लामी दावत के जड़ पकड़ने और अहले मक्का के खिलाफ अहले यसरब की सफ आरा होने की सूरत में मक्के वालों के लिए कितने खतरात थे। चूँकि मुशरिकीन को इस गंभीर खतरे का पूरा पूरा एहसास था जो उनके वजूद के लिए चैलेंज बन रहा था, इसलिए उन्होंने इस खतरे का कामयाब तरीन इलाज सोचना शुरू किया। और मालूम है कि इस खतरे की असल बुनियाद दावत इस्लाम के लंबरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। मुशरिकीन ने इस मकसद के लिए बैत अकबा कुबरा के तकरीबन 2.5 महीने बाद 26 सफर 1400 को दिन के पहले पहर मक्के की पार्लियामेंट दारुल निदा में तारीख का सबसे खतरनाक एहतजाज मुनक्किद किया और इसमें कुरैश के तमाम कबाइल के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौजू बहस एक ऐसे कतई प्लान की तैयारी थी जिसके मुताबिक इस्लामी दावत के इलमबरदार का किस्सा बाअजलत तमाम पाक कर दिया जाए और इस दावत की रोशनी की कली तूर पर मिटा दी जाए। इस खतरनाक इज्तमा में कबाइल कुरैश के नुमाया चेहरे ये थे, अबू जहल बिन हश्शाम, جبرین متم، شبیہ بن ربیہ، نظر بن حارث، ابو البختری بن حشام، نبی بن حجاج، امیہ بن خلف، وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دار الندو پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ الجلیل کی صورت قبا اوڑے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا، یہ کون سا شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خوانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے گا۔ لوگوں نے کہا، بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। UCP की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6

région sur le Sporting Médian. कोई नहीं है कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों के लिए कोई नहीं है कोई भी नहीं ना पास ना दूर एक यार दिल की अपनी चाहत का जो ऐलान किया

0: सिक्स बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, हम फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं भी बढ़ूंगा डॉक्टर दिलावर हुसैन की तरफ। डॉक्टर साहब, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं?
2: जी सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो डिपार्टमेंट जूलॉजी है अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UCB जो काम कर रहा है, तो उसमें हमारा BS जूलॉजी प्रोग्राम चल रहा है, 4 ईयर्स का जो प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा MPhil जूलॉजी का 2 ईयर का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है हमारा, उसकी इवनिंग के अंदर क्लासेज हैं। उसके अलावा हमने जो PhD के लिए भी वर्किंग पेपर जो तैयार किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द हम HEC को भेजेंगे फॉर द अप्रूवल ऑफ PhD इन जूलॉजी। एडिशनली हमने 1-2 डिग्री प्रोग्राम उनके ऊपर और वर्किंग जो है वो की हुई है, फॉर एग्जांपल BS इन पब्लिक हेल्थ के ऊपर एंड MS इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैडम भी कह रही थी आगे, ये जो ज़माना आ रहा है जो करंटली हम फेसिंग कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे UN ने अपने गोल सेट किए हुए हैं, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो MS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो अपनी वर्किंग है वो मुकम्मल की हुई है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसको किसी फॉर्म से, मे बी जूलॉजी और इन फ्राम डिफरेंट डिपार्टमेंट से, इसको भी ऑफर करेंगे इंशाल्लाह।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नागरा। इसी सवाल को आपकी तरफ बढ़ाऊँगा, आप भी बताएंगी मज़ीद कुछ प्रोग्राम्स की, मज़ीद आप एलुसिडेट करेंगी, इनको मज़ीद फैलाएंगी।
3: जी सर, जैसे BS जूलॉजी प्रोग्राम की बात हुई है, तो ये हमारा 8 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को एनिमल बिहेवियर, एनिमल डाइवर्सिटी, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, अलॉन्ग विद दैट माइक्रोबायोलॉजी एंड डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, जिसमें इकोनॉमिक जूलॉजी भी आ जाती है, इसमें इन्वायरमेंटल साइंसेज भी आ जाती है, वाइल्ड लाइफ भी है और इकोलॉजी है। तो ये सब प्रोग्राम्स, ये सब सब्जेक्ट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिकली एनिमल्स। लेकिन उसमें मैं ये ऐड करती चलूँ कि एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेटा, तो हम एज रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हम ह्यूमन बींग्स को ही डिस्कस करते हैं। और जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे फिजियोलॉजी को पर्टिकुलरली अगर ले लें, तो हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी है, एक्सक्रीटरी, वॉट एवर जो भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमारा जो रोल है, रोल मॉडल है उसके अंदर, वो हम एक ह्यूमन बींग के ही सारे सिस्टम को डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दैट MPhil जो हमारा प्रोग्राम इवनिंग में चल रहा है, तो उसके अंदर जो हमारे स्पेशलाइजेशन वाले प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर हो रहे हैं, जिसमें बच्चे रिसर्च तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका कोर्स वर्क है वो 1-2 सेमेस्टर्स में दे हैव टू कम्प्लीट दैट। और उस कोर्स वर्क में उनके जैसे एपिडेमियोलॉजी है, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल साइंसेज है, एडवांस कैंसर बायोलॉजी है, एडवांस माइक्रोबायोलॉजी है एंड डिफरेंट अदर टेक्निक्स और सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं। और जब वो रिसर्च अपनी करते हैं, तो दे डिज़ाइन देयर प्रोजेक्ट्स इन सच अ वे कि हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके जो एरियाज़ हैं स्पेशलाइजेशन के, वो उनके साथ रिलेट करते हैं। एंड दिस इज़ देयर ओन चॉइस, स्टूडेंट अपनी चॉइस के साथ अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं। एंड UCP और उसके साथ साथ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उनको फुली सपोर्ट करता है फॉर द रिसर्च वर्क, फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच दे आर रिक्वायरिंग।
1: थैंक यू वेरी मच मैम निमरा अफजल। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछूंगा, इन्होंने मुझे एक और सवाल दे दिया, ज़िमनी सवाल निकल आया कि इन्होंने कहा स्पेशलाइजेशन, पहले अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइएगा और किस तरीके से आप अपने MPhil के बच्चों को अपने फील्ड में लेके आगे चलती हैं, ताकि जब वो बाहर जाएं दुनिया में तो वो उड़ना सीख जाए।
4: जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल जो है पूछा है। सो मैं सर अगर अपनी बात करूँ, तो आई एम स्पेशलाइज्ड इन एनवायरमेंटल हेल्थ। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ, तो आपको पता है कि जो एनवायरमेंट में स्पेसिफिकली एयर, सॉइल और वाटर आर द मेन कंपोनेंट्स। और इसके लिए फिर मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, सो आई वर्क फॉर द एयर, फॉर द सॉइल एंड फॉर द वाटर। सो व्हाट वी एक्चुअली, मेरे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मेरे साथ रिसर्च करते हैं, तो जैसे अभी मैं आपको चंद एक अपने रिसर्च टॉपिक्स ज़रा आम जुबान में बताऊँ जो आम फहम हो, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको पता है कि प्लास्टिक्स का हमारा यूजेज का बहुत मसला चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन भी किया है। लोगों को सेंसिटाइज करना है कि इनके इम्पैक्ट क्या हैं।
1: रिसाइक्लिंग भी उसमें आती है?
4: जी सर, उसके लिए हम 3 आर्स की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. सो द फर्स्ट थिंग इज रिड्यूस. तो 3 आवर्स में जब रिड्यूस आ रहा है तो हमें इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है. अब कहीं अगर हम बात करें कहाँ जोलॉजी लोग समझते हैं और कहाँ कहते हैं प्लास्टिक की बात हो रही है, लेकिन सर ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अभी जैसे ये प्लास्टिक जब आपको पता है कि टूट फूट का शिकार नहीं होते, दे डू नॉट डीग्रेड इन नॉर्मल कंडीशंस. सो जब ओवर द ईयर्स 100 ऑफ ईयर्स अगर आपका प्लास्टिक रिटेन करता है और अगर उसकी एब्रेशन हो भी रही है तो वो इतनी स्लो है कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स में डिसोसिएट हो जाता है और फिर जब वो वाटर बॉडीज से एनिमल्स तक पहुँचता है तो आपकी फ़िश के अंदर बायोअक्यूमुलेट हो रहा है. मैं टर्म्स कुछ ऐसी यूज़ करूँगी जो आम फहम हो कि अगर फ़िश के अंदर या हम अब देखेंगे पाकिस्तान में सी फूड का कितना अब हम लोग जाते हैं, लोग खाते हैं और पसंद करते हैं. जब ये सारी एक्यूमुलेशन फिश में आपके लॉबस्टर्स में लेस से हो रही है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो रही हैं. उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी बॉडी आ रही है और फिर आपकी फंक्शनिंग बॉडी की जो है वो अफेक्ट हो रही है फ्रॉम लिवर फंक्शन टू द रीनल फंक्शन, जिसमें हम किडनीज की बात करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है और हम इसको एनिमल मॉडल्स पर करके देखते हैं. जैसे मेरे स्टूडेंट्स इसको डिफरेंट एनिमल मॉडल्स पर करके देखते हैं और फिर हम उनके इफेक्ट्स देख के रेजोनेट करना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पर भी है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. अगर आप फिश फूड कंज्यूम कर रहे हैं या अगर फिश नहीं आप कोई भी सी फूड खा रहे हैं तो अल्टीमेटली यू आर एक्सपोज टू दैट माइक्रोप्लास्टिक इम्पैक्ट. और हमें ये आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में मेरे बाबा भी बताते हैं कि कपड़े के थैले हम लोग लेके चलते थे एंड देट वॉज नॉट अ स्टेटस सिम्बल. एक थैला 1000 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा होता था, धुलता था, आपका इन्वायरमेंट भी महफूज था. आज हम प्लास्टिक को चाहे कन्वीनियंटली यूज़ करने के चक्कर में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं. सो वॉट वी are trying to actually assess the repercussions or phir logon ko sensitize karna to reduce the use of plastic and go for the other alternatives whatever we can have. So ye ek ye term hai. Kuch hum smoke pe mere students kaam kar rahe hain, aapko pata hai this is one of the most important issue. To aksar log kehte hain ki zoology aur smoke. तो द थिंग इज़ जैसे मेरी जूलॉजी एक बहुत डाइवर्स सर ब्रांच है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल हेल्थ तो हम स्मोक को भी देखते हैं कि स्मोक किस तरह से इफेक्ट कर रहा है और उसके अगेन हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स ये भी लगाते हैं कि एक एनिमल मॉडल को एक्सपोज करके देखें कि स्मोक के क्या इम्पैक्ट्स हैं. सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली वर्क, दिस इज़ माई स्पेशलाइजेशन एंड आई विल leave it to rest of my colleagues to you know to discuss their field of specialization.
1: Thank you very much for this very detailed briefing. You put in person like me who is a you know a novice in this field wiser than before. Thank you very much for your brief discussion and elucidation and explanation. Dr. Saab, Dr. Dilawar Hussain, aapse bhi yahi sawal karunga kyunki baat se baat chal padi aur deep se deep jalte hain. To aap bhi apni फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन बताइएगा स्टूडेंट्स के बारे में और उसके बाद ही आपसे ज़िमनी सवाल भी होगा, अपनी लैब्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा. 2 से 3 मिनट आपके पास है.
2: जी सर, बहुत शुक्रिया सर. सबसे पहले मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बात करूँ तो वो एक्वा कल्चर एंड फिशरीज़ है और अगर इसको मैं थोड़ा नैरो रेंज में लेकर बात करूँ तो फ़िश न्यूट्रिशन के ऊपर और टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर मेरे जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं. आपको पता है जैसे मैडम बता रही थी कि अभी जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड सी फूड की तरफ जो कि डैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो उसके अंदर फिर उसकी प्रोडक्शन में कुछ मसाइल आते हैं जैसे डिजीज़ हैं उसको रजिस्ट करने के लिए. तो उस डिजीज़ से कोप करने के लिए फिर उसके ऊपर मेरे जो स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं कि फ़िश के अंदर जो डिज़ीज़ है उसको किस तरह से कम किया जा सके या उसके जो ग्रोथ है उसको कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं. तो इसके लिए डिफरेंट हम जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट हैं उनको यूज़ कर रहे हैं फीड के अंदर और लैब के अंदर ट्रायल लगा के देखते हैं कि वो फ़िश के अंदर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कितनी आई है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप. इसी तरह से कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं फीड के अंदर ताकि हम ये देख सकें कि वो जो ऑयल्स हैं वो किस तरह से जो फ़िश के इम्यून सिस्टम है उसको वो बूस्ट अप करते हैं ताकि वो डिज़ीज़ के खिलाफ एक रेजिस्टेंस दे सकें और फ़िश की जो ग्रोथ है या जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हम उससे ले सकें. उसके बाद सर दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया लैब्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6-7 वेल एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं और वो तमाम स्टूडेंट उसके लिए वो तमाम मौके हैं कि वो किसी भी लैब में जाके ओपनली काम कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी अपनी जूलॉजी की भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिपेंडेंट लेबॉरेटरी है जिसके अंदर हमारे जो इस वक्त के इंस्ट्रूमेंट हैं जो चाहिए वो सारे के सारे मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक दो का आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा. जैसे हमारे पास वहाँ पे जूलॉजी लैब में PCR मशीन है जिसके ऊपर हमारे MPhil के और इवन के PhD के स्टूडेंट हैं दूसरे डिपार्टमेंट से वो आके वर्किंग कर रहे हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हमारे ऊपर, हमारे जूलॉजी लैब में जिसके ऊपर स्टूडेंट काम कर रहे हैं, इस तरह से जेल डॉग एक ऑपरेटस है, एग्रोस जेल वगैरह जब स्टूडेंट रन करते हैं उसके ऊपर, इंक्यूबेटर हमारे लैब के अंदर मौजूद है, माइक्रोवेव ओवन वहाँ पर मौजूद है, फ्लेम फोटोमीटर हमारी लैब के अंदर जूलॉजी लैब के अंदर मौजूद है, इसके अलावा -80 का फ्रीज़र जो पूरे UCP में सिर्फ हमारी लैब में जूलॉजी में मौजूद है, जिसके अंदर हम जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने सैंपल्स को सेव करना हो या कोई केमिकल को रखना हो तो वहाँ पर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एडिशनली एनिमल हाउस की भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है, तो डॉक्टर निमरा उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करें।
1: बहुत शुक्रिया, अच्छा कि आपने, क्योंकि वो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उन्हीं पर करूँगा। लेकिन आप जानते हैं तवालत बाज़ात बोरियत का बायस बनती है, इसलिए हम जाएंगे एक और ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 90.4।

0: और वो चेंज होती रहेगी और डिफरेंट मोड में आती रहेगी।
1: दोनों तरफ से रेजिलियंस का
0: मामला है। वो हमने पढ़ा है साइंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हम चाहते हैं कि फिटेस्ट हम रहें, क्योंकि अगर रहना है तो ये मैनेज तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए सर, फ्रॉम द पेस्ट मैनेजमेंट, जिस तरह भी हमने जीरो हंगर की बात की, और फिर एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू आ रहा है,
1: ये भी एसडीजी गोल में से एक गोल है।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब हम बात क्लाइमेट चेंज की करते हैं, जिसको दुनिया पहले मानने को तैयार नहीं थी, और आज हम उसके जिसे कहते हैं रिपरकशंस देख रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स देख रहे हैं। हमारे जो सीजन में आपके बारिशों के पैटर्न है, रेन का सीजन है, या अभी लाहौर में या पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो मेजर इफेक्टेड सिटीज़ है ड्यू टू पोल्यूशन, और फिर इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, तो सर्वाइवल तो हमारा मुश्किल हो ही रहा है। तो जूलॉजी इस कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट है। आपको जब अभी हमारे माशाल्लाह सर, आप जैसे आपका ताल्लुक फिजिक्स से है, तो हम इंटरडिसिप्लिनरी काम भी कर रहे हैं, जहां हम जो जूलॉजी के लोग हैं वो एनिमल इंट्रैक्शंस बताते हैं, तो मैथ्स वाले उस पर मॉडलिंग करते हैं, फिजिक्स वाले उस पर उन जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उन पर डिटेल्ड हमें ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वी कैन मेक अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट टू यू नो टू कूप विद द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन दिस वर्ल्ड। यस, एंड मूव अहेड। सो दिस वॉज पर्टिकुलरली वेरी एट अ वेरी स्मॉल स्केल व्हेन वी टॉक अबाउट 90s, व्हेन द पीपल वर डूइंग रिसर्च। मैं अपनी दुनिया में थी, जूलॉजी वाले अपनी दुनिया में थे, या फिजिक्स वाले अपनी दुनिया में थे। आज हम ये जान चुके हैं दैट वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन,
1: नॉट इन आइसोलेशन।
0: सो जूलॉजी और स्पेसिफिकली यूसीपी में फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वी आर नाउ ओपन टू वर्क टूगेदर टू एक्चुअली प्रोवाइड अ कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। और वो प्रॉब्लम्स तो वही हैं, तो हमारी ये जंग खत्म हो गई है कि कौन बेहतर है। हमें पता है कि सबकी जरूरत है और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की जरूरत है।
1: Few words on your animal.
0: जी, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल मॉडल्स, तो एनिमल मॉडल इस्तेमाल करने के लिए एक तो सबसे पहले हमारे पास एक कमेटी है कि हमारा एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर है, वे वी पास द साइनोप्सिस, जो आप रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारा एक एथिकल रिव्यू बोर्ड है, क्योंकि एनिमल्स को बगैर किसी एक प्लान प्रोग्राम सिनेरियो के आप नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू इज के पहले तो एक आपका साइनोप्सिस एक प्रोसेस से गुजरता है कि आपको उस पर एनिमल मॉडल लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी जैसे हमारी जब उस प्रोसेस से गुजर आता है प्रपोजल, देन वी हैव अ एनिमल हाउस फैसिलिटी वेयर वी आर वेरी मच विजिलेंट अबाउट द नंबर ऑफ एनिमल्स बीइंग यूज्ड, बिकॉज देयर आर एथिकल कंसिडरेशंस व्हिच वी कीप इन माइंड बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रायल, एंड फॉर दैट ट्रायल वी हैव एन कॉम्प्रीहेंसिव फैसिलिटी नॉन एज एनिमल हाउस। और वो एनिमल हाउस यूसीपी के फार्मेसी स्कूल भी यूज़ कर रहा है, जूलॉजी के लोग भी यूज़ कर रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ एन ओपन हाउस फैसिलिटी वेयर यू हैव टू फर्स्टली गो थ्रू द एथिकल रिव्यू बोर्ड, एंड देन यू कैन हाउस योर एनिमल्स इन द एनिमल फैसिलिटी। उसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, माइस हैं, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, उनकी हाउसिंग की जाती है, एंड द स्टूडेंट्स एक्चुअली आर इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल हाउस। और उसमें हमारी फिश भी हम लोग वहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंसिव सेट है, the students do the animal trial including the fish. अब उसमें आ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्योंकि उसको हाउस कर रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो एनिमल रेयरिंग कर रहे होते हैं, एंड देन दे आर डूइंग इट कंसिडरिंग द एथिकल गाइडलाइंस। तो उस पर हम अपना लेट्स से अगर कोई प्लूटेंट है उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, या यूजेज है, जैसे अभी मैडम ने हमें ओमेप्राजोल की बात की, तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये एक दवाई खा लेते हैं कैप्सूल खाने से पहले, तो इसकी क्या रिपरकशंस हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं ना रिसर्च, वी आर वर्किंग ऑन द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, सो दैट कि हम जो रिसर्च करवाएं उसकी एप्लीकेशन हो आपके रियल वर्ल्ड में, और हमारे मसले जो हैं वो इस हकीकी ज़मीन पे वही हल हों।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर निमरा अफजल, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव तरीके से बयान किया अपने एनिमल हाउस को। इसी के साथ बढ़ते हम एक वक्फा की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक। हम फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं भी बढ़ूंगा डॉक्टर दिलावर हुसैन की तरफ। डॉक्टर बताइएगा, अपने स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से आइंदा आने वाले ज़माने के लिए फॉर द फ्यूचर तैयार करते हैं? सेमिनार्स, विजिट्स, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंसेस, आप बताइए इस बारे में।
2: तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट जूलॉजी में रेगुलरली सेमिनार जो वर्कशॉप स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और आपको पता है ये जो सेमिनार और ये जो वर्कशॉप है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है स्टूडेंट की लर्निंग के अंदर, उनकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर, उनके न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके कैरियर रेडीनेस के लिए उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हम ईयरली और सीरीज़ ऑफ सेमिनार हमने अरेंज करते हैं, उसमें कुछ को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे नंबर वन के ऊपर हम हर साल वर्ल्ड फिशरीज़ डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके अंदर हमारी एक पूरी एक फुल डे की एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम पहले स्टार्ट करते हैं एक अवेयरनेस वॉक के साथ, और उसके बाद हम जो है वो स्पीकर को बुलाते हैं फ्राम दी रैली रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, जैसे पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से हम एक स्पीकर को बुलाते हैं ताकि वो स्टूडेंट को जो है वो जो करंट इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं एक्वाकल्चर और फिशरीज़ के ऊपर, उसके ऊपर उनको टॉक दे सके। उसके बाद दूसरा, हम वर्ल्ड फिशरीज़ डे को भी सेलिब्रेट करते हैं ईयरली, उसके अंदर भी उसी तरह से हम डिपार्टमेंट फिशरीज से लोगों को बुलाते हैं एज इनवाइटेड स्पीकर, और जो इस वक्त की टॉपिक्स हैं जैसे GIS की मैपिंग है उसके ऊपर बच्चों को हम जो वर्कशॉप्स हैं जो सेमिनार वो डिलीवर करवाते हैं। इसके अलावा हमारी एक बहुत सी फेमस टैक्सीडर्मी की वर्कशॉप हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो कि हम हर साल जो है इसको स्टार्ट करते हैं, बच्चे इसको पूरा सीखते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास जो एनिमल्स हैं, ख़ास ऊपर जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको स्टफिंग सिखाते हैं कि कैसे उसको हमने प्रिजर्व करना है फॉर रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने हमने घर में रखने के लिए या एज ए शोकेस पीस के तौर पर, कि वो एनिमल जो बेचारे डेड हो गए बजाय इसके कि वो हम उसको एनवायरनमेंट को ख़राब होने दें, उनके फिर हम क्या करते हैं, स्टफिंग करते हैं। तो ये पूरी एक साइंस है जिसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। इसके अलावा हम एपिकल्चर के ऊपर, हनी बी फार्मिंग के ऊपर हमारी वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, सेरीकल्चर के ऊपर हमारी वर्कशॉप है वो हम करवाते हैं, लैग कल्चर के ऊपर लास्ट ईयर हमने एक जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट करवाई थी। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट, हम उनको एक पूरा एक ओवरव्यू देते हैं कि सिर्फ क्लासरूम तक उनको महदूद नहीं रखते, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम उनको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया। अभी हम तकरीबन बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के खत्म की तरफ। डॉक्टर शाजिया नागरा से पूछूंगा, फिर उसके बाद आखिरी सवाल करूंगा डॉक्टर निमरा अफजल से। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शाजिया नागरा साहब, आपसे सवाल है कि व्हाई जूलॉजी एट UCP, व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर डिपार्टमेंट?
3: थैंक यू सर। जैसे अगर हम बात करें कि व्हाई जूलॉजी एट UCP, तो व्हाट आई कैन ऐड इनटू दिस के हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल इक्विप्ड लैब्स हैं यहाँ पे। वी हैव almost all the faculty members, they have done their PhDs and of course they are very experienced, or jis tarike se wo bachon ko apna jo bhi subject hai usse related jo information pahunchate hain, main samajhti hu ki hum yahan bahut mehnat se bachon ko ye sara kaam karwa rahe hain। and specifically agar research ki baat ki jaye तो हर एक सुपरवाइज़र बच्चों के लिए फुल टाइम अवेलेबल है। वी हैव डिस्प्लेड द टाइम टेबल जिसके अंदर हमने अपने प्रॉपर रिसर्च आवर्स रखे हुए हैं, और उसके अलावा जो फ्राइडे का दिन है वो भी कुछ ऐसे रिसर्च के लिए हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह से हम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, या एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे बहुत सारी और यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हमारे पास आते हैं MPhil के अंदर, दे हैव एक्चुअली टोल्ड अस कि जैसे BS में उन्होंने वहाँ पे क्या फैसिलिटीज इंजॉय की हैं, या उन्होंने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे BS लेवल के ऊपर भी हम बच्चों को जो प्रोजेक्ट कराते हैं तो प्रॉपर थीसिस लिखते हैं वो और प्रॉपर रिसर्च करते हैं। जबकि बाकी जगहों से आने वाले बच्चों के से हमें ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला है कि वो वहाँ पे BS लेवल पे उनको प्रॉपर प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं या नहीं, या उनका कोई रिसर्च का एक्सपोजर है या नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. सो इसलिए आई वुड सजेस्ट और आई वुड रिकमेंड कि अगर बीएस जूलॉजी करना है तो फिर आप यूसीपी ही आए, बिकॉज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज आर हेयर और स्पेसिफिकली जितने हमारे सारे एक्सपीरियंस किस्म के टीचर्स हैं यहाँ पे, वो बहुत केयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स की और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक्सेल करें अपनी फील्ड के अंदर और जब ये बाहर निकलें तो प्राउडली दे कैन प्रेजेंट देमसेल्व्स एज यूसीपीएन और वो बता सकें कि हमने ये चीज़ लर्न की है यहाँ से और कितने अच्छे तरीके से लर्न की है. सो दिस इज बेसिकली द थिंग.
1: मैं निमरा अफजल आपसे यही सवाल, लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल सवाल भी आप ही इख्तिताम करूंगा आज के प्रोग्राम का. पहला सवाल तो यही, व्हाई सो स्पेशल इन योर डिपार्टमेंट दैट इट शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑल द इनकमिंग स्टूडेंट्स, right? And second, you are also holding the portfolio of the research journal of FOST. It just struck my mind. So usi pe ikhtitam kijiyega, 2 se 3 minute aapke paas hai.
4: Ji sir, bahut shukriya. Sir, performance is always evaluated by the indicators, right? So sirf jaise madam ne aapko bataya ki teaching and research excellence, to uske main aapko kuch indicators apne success point bata deti hu. So in our BS program jo bacche hamare research karke yahan se pass out hote hain, they have a number of research publications. Aap ye kahin pe nahi dekhenge ki government universities pe bacche research publications karte hain BS level pe. So I have a complete proof that our BS students are publishing their research in high impact factor journals. So one of my student has actually published almost 20 papers at the level of BS. हाँ, ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना इंटरेस्टेड है, लेकिन वी प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू आर कैपेबल टू कंट्रीब्यूट इन द साइंस. सो जैसे मैंने आपको कहा कि वी डू साइंस, सो वी पब्लिश साइंस. यस एग्जैक्टली. सो दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर. सेकेंड इंडिकेटर इज़ कि हमारे बीएस के स्टूडेंट्स, मोर देन 15 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फॉर द इंडोनेशियन यूनिवर्सिटीज फॉर एमफिल. This is another success point. So where we are imparting a knowledge, where we are preparing the students for the international competition for the scholarships and everything like that. So our students are also, you know, work studying currently for the master's program in international universities. The third point is we have a faculty that is comparatively young enough and are actually working in the field too, because they have the hunger of success, right? So they are working, they have that motivation to work. And then the students become the, you know, driving power for them, and they work together to make an impact.
1: You very rightly said you are working your heart out.
4: Yes.
1: For them. So the last part, that is the journal.
4: जी. So sir, मैं managing editor भी हूँ अपने हमारे faculty of science and technology का journal है UCP JST, journal of science and technology, that is currently holding the status of Y category. HEC approved है. Y category में है and we started in it in 2022 and now we are looking forward for the X category and in that particular journal हम लोग different जो basic sciences हैं और applied sciences हैं उनको लेके चलते हैं. This journal is also in collaboration with the faculty of pharmacy. So ये दो faculties जो हैं they are working hard on the sciences to contribute something and ये journal जो है यहाँ पे हम publish करते हैं student के उस काम को जो कि इनोवेटिव है एंड येट प्रैक्टिकल है. सो आई इनवाइट फ्रॉम द फोरम ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्लीज पुट योर पेपर फॉरवर्ड फॉर योर रिसर्च पब्लिकेशंस इफ यू वांट टू पब्लिश इट इन अ वाई कैटेगरी अप्रूव्ड जर्नल्स, सो दैट स्पेसिफिकली सर बीएस के बच्चे जो छोटे प्रोजेक्ट करते हैं येट इम्पैक्टफुल है, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द जर्नल. यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉन्ट्रीब्यूट.
1: बहुत बड़ी बात है, वेरी एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन गिवन बाय यू. Thank you so very much, all of you, Dr. Shazia Imtiaz Nagra, Dr. Namra Afzal, ya Nimra Afzal, mujhe maaf kar dijiyega, talaffuz mein agar galti ho, kotahi ho, aur Dr. Dilawar Hussain, bahut umda guftugu rahi, mujhe ye maanne mein koi baak nahi hai, koi aar nahi hai, ki main aaj ye chhata program kar raha hu, mere khayal mein ye, it is one of the most entertaining and enlightening discussion. Thank you very much for being here. Isi ke saath saamein, hum ikhtitam ki taraf badhte hain. Kahin mat jaiyega, agle program ka intezaar kijiyega. Aakhir mein hamesha, Pakistan zinda.

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद FM 92.6।

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD.
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीदें। मेरे साथ मौजूद हैं नवीरा बाबर। नवीरा, जैसे कि आप बात कर रही थी और बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने राइज किए कि अगर एजुकेशन और विदाउट एटीट्यूड अगर कामयाब होना होता तो हसन अली कभी ना कामयाब होते। अच्छा, हमने एक चीज़ ये देखी है कि जो जिन स्टार्स का आपने नेम लिया है कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या मुआशरा जिसको कामयाबी देखता है कि अगर एक इंसान ने मास्टर्स किया है, एमफिल की है, पीएचडी की है, मुआशरा उस इंसान को कामयाब देखता है। कुछ लोग ऐसे उठते हैं कि मैट्रिक पास की, आर्मी में गए बींग अ सोल्जर, मुल्क के लिए शहादत दी, ठीक है, और पूरे मुल्क में उनका नाम होता है। तो ऐसे पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ कहाँ से आगाज़ इनका कहाँ से होता है?
2: अली, इसमें दो सवाल के पहलू। पहला पहलू तो ये है कि हमें इकॉनमी को अलग करना पड़ेगा तालीम से, ठीक है। जब आप बच्चों को, मैंने देखा है ना, अभी जो हमारी माएँ हैं उनको नहीं पता कि तालीम हासिल करने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार मिले। मार्केट इतनी ज़्यादा सेचुरेट हो चुकी है कि शायद एक यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है उसकी सैलरी से ज़्यादा उस कैफेटेरिया वाला उसका अर्न करता होगा, ठीक है। तो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए तो हाँ अच्छा है, तालीम हासिल कर ले, एमफिल कर लें, लेकिन इकोनॉमिकली उसका कोई वो नहीं है कि पैसे कमाने के लिए आपको तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। दूसरी रही बात इस चीज़ की, तो हाँ कहीं ना कहीं वो तरबियत जो आपकी पेरेंटिंग है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपको आपके पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं तायुन कर रहे होते हैं उन डायरेक्शंस का जो आपकी होती हैं। कभी कभार होता है कि विन विन सिचुएशन है कि बच्चे की फितरी रुझान भी उधर ही जा रहा है जिधर पेरेंट्स ने उसको लगाया हुआ है। लेकिन दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि माँ बाप ने बच्चे को मेडिकल पढ़ाना है लेकिन वो तो कोई आर्टिस्ट है, तो कभी कभार होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। तो कुछ सूरतों में आप कह सकते हैं कि हाँ आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो आपकी शख्सियत साजी में किरदार अदा करता है, लेकिन उसमें दो सूरतें, एक तो ये कि आप उस माहौल में ढल भी सकते हैं, दूसरा ये कि आप उस माहौल के बागी भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में ढलें। हमारी मतलब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड वो नहीं कहते लेकिन वो उस फील्ड में गए। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपको पता है एक रिजर्व सोसाइटी है, बहुत सी लड़कियां जो फील्ड में काम कर रही हैं उनको घर से सपोर्ट नहीं है। तो पेरेंटिंग हाँ एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है, आपकी वैल्यूज़ को, कोर वैल्यूज़ को डेवलप करने में एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। लेकिन करियर चॉइसेस, मुझे लगता है कि मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पेरेंटल इन्फ्लुएंस के हक में नहीं हूँ। पेरेंट्स का काम है वो आपको गाइड करें, लेकिन ये कहना कि बच्चे किसी की ख्वाहिशात का बोझ उठाने के लिए नहीं आए दुनिया में, कि अगर आपकी ख्वाहिश ना कि आपका बच्चा ये बन जाए तो मैं भी वो ये ना बनना चाहता, तो ये मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता है कि ये करना ज़रूरी है। बाकी अली, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे आपने कहा है ना सोल्जर, सिविल सर्विसेज, ये प्रोफेशन अच्छे हैं उन लोगों के लिए जो एक लेबल के नीचे पूरी ज़िंदगी काम कर सकते हैं। वो लोग जो एक लेबल के नीचे पूरी ज़िंदगी काम नहीं कर सकते उनके लिए ये जॉब्स अप्रोप्रिएट नहीं हैं, जो अपनी 9 to 5 पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकते एक ही फील्ड को और वो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं। तो आर्मी ऑफिसर्स के लिए अच्छा है, आपका फैमिली में ज़रा हो जाता है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, लेकिन आपको आर्मी ऑफिसर्स का नहीं पता होता, आपको लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर का नाम नहीं आता होगा। तो इस वजह से अगर आपको शौक है सेल्फ ब्रांडिंग का, सेल्फ प्रमोशन का, और आपको पता है कि आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, फिर आप नौकरी की तरफ ना जाएं, फिर अगर आप सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हैं तो मुझे लगता है आप दूसरी तरफ जाएं।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें की आपने और यकीन माने, मैं अपने सामीन को भी बताना चाहूँगा कि माजी में इस रेडियो में बहुत से प्रोग्राम होस्ट कर चुका हूँ और मुख्तलिफ ईद ट्रांसमिशंस, मुख्तलिफ जो 14 अगस्त की ट्रांसमिशंस होती हैं और अपने प्रोग्राम में भी होस्टिंग करता रहता हूँ। तो मेरा ध्यान जो होता है या मेरी अटेंशंस जो होती हैं वो प्रोग्राम की तरफ होती हैं। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब नवेरा बात कर रही है मैं बातों में इतना गुम था कि मुझे बिल्कुल ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ या ट्रांसमिशन चल रही है या मैं होस्ट हूँ और मुझे नेक्स्ट जो सवाल है अपना वो तैयार करके पूछना है। नवेरा, बहुत शुक्रिया, आप बहुत खूबसूरत बातें करती हैं और यकीन माने मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। नवेरा, एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है मेरा और मैं आने से पहले भी इस बारे में सोच रहा था और सोसाइटी में भी हम ये चीज़ देखते हैं। हमारा मॉडर्न पाकिस्तानी सिस्टम देख लें या आप बिल्कुल बैक एंड्स का पाकिस्तानी सिस्टम देख लें, पूरे पाकिस्तान में, पूरी सोसाइटी में ہمیں یقین جو ہے اس وہ ہمارے پیرنٹس نہیں سکھاتے. سم ہاؤ آپ آج سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہیں, آپ سی ایس ایس کر جاتی ہیں, آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتی ہیں فار ایگزامپل. جب آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتی ہیں, کیا آپ کے پیرنٹس آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ کو 2 سال سرو کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال آئے کہ شاید میں اس فیلڈ کے لیے نہیں, جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا جی. کیا تو آپ چھوڑ کے واپس میڈیا میں آئے جی. تو کیا آپ کے پیرنٹس آپ کے اس یقین کو, آپ کے اس سوچ کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے سم ہاؤ. تو پاکستان میں اولاد کے جو فیصلے ہیں ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟
2: علی, میں نے ریسنٹلی ابھی ایک آرٹیکل لکھا تھا روزنامہ پاکستان میں, اس کی جو کرکس تھا وہ یہی تھا کہ آپ جو چیزیں محسوس کر سکتے ہیں معاشرے میں, آپ ان کی عکاسی کر سکیں, اس کا عنوان یہ تھا کہ ماحول کے بچوں کی صحت پہ کیا اثرات, ان کی نشو نما پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک بہت پیرنٹل پریشر اور پیٹریارکل سوسائٹی میں, جہاں پہ میں کل اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کہ باہر کے ملکوں میں تو چلو 18 کے بعد آزاد کر دیا جاتا ہے, یہاں پہ 60 سال کی عمر میں بھی اگر آپ کے والدین زندہ ہیں حیات ہیں تو آپ کی نیکسٹ جنریشن کے فیصلوں پہ بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں, ان کے رشتے کہاں ہوں گے, انہوں نے کون سی فیل, یہ چیزیں جو ہیں نا ایک لمٹ تک تو ٹھیک ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہے آپ رسی اتنی کھینچیں جتنی ٹوٹے نہیں. آپ جب ایک ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ نے اس کو سنگلی ڈالی ہوتی ہے نا, وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ نہیں توڑے گا,

0: पहली लड़की है जो सिविल सर्विसेज एकेडमी में आके पहले दिन मुझे कह रही है कि मैं 2 साल नहीं लगाऊंगी, मैं साथ में कुछ और भी सोच लूंगी। तो मेरे वालिद साहब ने थोड़ा सा तो ज़ाहिर रेजिस्ट किया, उनको था कि एक बच्ची जिसमें पोटेंशियल भी है वो पढ़ाई में भी अच्छी है, वो CGPA में भी अच्छी है, तो ये चीज़ क्यों कर रही है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आई कि हर शख्स में खुदा ने जो सलाहियत रखी है ना, जो रिस्क आपका लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये प्लस पॉइंट था कि जो एबिलिटी मुझे अल्लाह ने दी थी मैं उसमें पक्की थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म थी कि अच्छा अब इसको, अभी ये फ्रेश ग्रेजुएट है तो इसके इतने बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं और लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं कि बस आओ MOU साइन करो और काम शुरू करो। तो 2 साल में मार्केट सेचुरेट हो जाती है। आप ये देखें कि CSS एक अटेम्प्ट है, हाँ बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो 3-3 अटेम्प्ट भी देते हैं, उनको शौक भी होता है, बट वो स्टिल ड्यू टू सम रीज़न एंड ड्यू टू लक फैक्टर एज वेल वो नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो अगर आप वो 2 साल रिस्क ले सकते हैं तो आप ज़रूर लें, वरना आप इसको एक अटेम्प्ट कंसिडर करें और अपनी बाकी के जो आपके काम हैं उसको जारी रखें। क्योंकि मेरा हमेशा से ये था कि मैं रियलिस्टिक अप्रोच रखती हूँ, एक चीज़ इसके होने के चांसेस 2% होते हैं, आपकी ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कि आप समझ लें कि नहीं भाई मैं तो, हाँ एक अच्छी चीज़ है, हो जाता है, विन विन सिचुएशन है, लेकिन आपको दूसरी चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है। और हमारे पेरेंट्स में अली मैं आपको बताऊँ ये वाली चीज़ है, कुछ बच्चों की बिल्कुल वो फितरी रुझान नहीं होता, आप उधर को उनको घुसेड़ देते हैं, वो पूरी ज़िंदगी एक अनवांटेड लाइफ गुजारते हैं। अब उस अनवांटेड लाइफ का ज़िम्मेदार कौन होता है? ये मुआशरा होता है, उनके पेरेंट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जब आप कि फितरत के ख़िलाफ़ आप काम करते हो ना तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। मैंने शायद बहुत सख्त डिसीजंस लिए, मैंने FSC की, FSC में नंबर बहुत अच्छे थे, मुझे बड़े थे मशवरे देने वाले बायोटेक कर लो तो फार्मेसी कर लो, लेकिन मुझे पता था मैं उसमें एक मीडियोकर रहूँगी अपनी फील्ड में। मैंने अपने बैच का हाईएस्ट CGPA लिया। तो आप जो काम आपको पसंद होता है ना, जो आप बगैर थके करते हो, मैं इस हक में हूँ कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, आप वो वर्क करें जिसको आपको करने में मज़ा आ रहा है, जिसमें जो आपको हार्ड नहीं लग रहा। इतनी मुशक्कत की आपको क्या ज़रूरत है कि एक फील्ड आपका उसमें रुझान ही, अब आप मीडिया में काम करते हैं आपको पूरा दिन भी ये काम दें तो इट्स लाइक आपका काम है। अब यही मैं आपको किसी और तरफ डालूं और आपको बिल्कुल आइसोलेट कर दूं कि मतलब समबडी जिसका काम स्टेज है आप उसको आइसोलेट करें, तुम्हें कमरे में रहना, तुम्हें बाहर नहीं निकलना, तुम्हें इससे नहीं मिलना, 2 साल बाद जब वो निकलेगा तो अगर वो अचीव कर लेता जो उसका गोल है तो विन विन सिचुएशन है, और अगर वो नहीं करता तो आप उसको पूरी ज़िंदगी के लिए उस कुएं में धकेल देंगे। एक टॉपर को जब आप फेलियर बनाते हैं ना उसमें से टॉपर निकल जाता है फिर, और उसकी शख्सियत का जो ज़िया होता है उसमें और वो जो डीमोरलाइज होता है उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो ज़िम्मेदारी कबूल करना बड़ा मुश्किल है। आई टोल्ड माई फादर कि अगर मेरे 2 साल बर्बाद हुए और वो ऑफर्स जो भी आ रही हैं मार्केट सेचुरेट हो गई और मैं ना कर सकी तो हु इज़ ऑन आंसरेबल फॉर दैट? तो कहीं ना कहीं समझ आ गई कि नहीं
1: अल्लाह पाक ऐसे मैच्योर जो औलाद है वो सभी पेरेंट्स को दे, और
0: अच्छे पेरेंट्स भी दे अली, माय फादर आल्सो अंडरस्टूड, वरना कौन?
1: उनको पर्सनली जानता हूँ और उनसे मिलता भी रहता हूँ डिफरेंट इवेंट्स में। अल्हम्रा में लास्ट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो ऐसी खूबसूरत फैमिली है यकीन माने कि जब भी मिलता हूँ ऐसा महसूस होता है कि सभी आर्टिस्ट हैं यहाँ, आर्ट शुरू यहाँ होता है, इख्तिताम ही यहाँ होता है, मतलब इतनी खूबसूरत आर्टिस्टिक फैमिली। क्योंकि मैं ज़्यादा अट्रैक्ट इस वजह से होता हूँ कि मैं जिस फैमिली में पैदा हूँ यहाँ, वहाँ कोई आर्मी ऑफिसर है, वहाँ कोई सिविल सर्वेंट है, वहाँ कोई इंजीनियर है, वहाँ कोई डॉक्टर है, ठीक है, किसी का भी ताल्लुक आर्ट से नहीं है मेरी फैमिली में, मेरे पूरे ख़ानदान में, इवन हमारी पिछली 7 नस्लों में किसी का आर्ट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे घर जो आर्ट को प्रमोट कर रहे हों, ऐसे घर जो अपनी औलाद को खुद लेके जाएं आर्टिस्टिक प्लेसेस पे, तो वो मुझे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें सदाकत भी है कि जो आर्ट है ये रहनुमाई करता है मुआशरे की, मुआशरे को ले के आर्ट चलता है, आर्ट बताता है कि बेटी बहन और बीवी में क्या तमीज़ रखनी है आपको, आर्ट आपको समझाता है कि मुआशरे में सफाई रखना कितना ज़रूरी है, आर्ट परफॉर्म करके आपको बताता है, वो ख्वाह ड्रामे की सूरत में हो, वो ख्वाह फिल्म की सूरत में हो, कि ज़िंदगी को आपने बेहतर अंदाज में कैसे लेके चलना है। तो आर्ट को आज के दौर में गलत भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन आर्ट की बुनियाद पढ़ने का आगाज़ आप करें, जर्मनी का जो थिएटर था, जर्मनी की जो आर्ट थी, तो वहां से हमें पता चलता है कि आर्ट की अहमियत क्या है। तो इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम नवेरा से पूछेंगे कि टीचर्स और जो स्कूलिंग है वो कितना मैटर करती है आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी में जब आप

यंग एज में आते हैं और मार्केट में उतरते हैं, तो पिछला जो सफ़र स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आपके पेरेंट्स की तरबियत का है, वो कितना ज़रूरी है। तो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 UCP की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद नो। नवीरा, हम इस वक्त लास्ट लिंक में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे मैं पूछने वाला हूँ। आपसे मैंने कोई नज़म भी सुननी है इसी लिंक में, तो हमारे सामीन को सबसे पहले तो बताइएगा कि मैं ये सोच रहा था ब्रेक में भी कि हम अगर ज़िद से या हम अपने मेच्योरिटी लाइफस्टाइल में किसी अलग जॉनरा को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स नहीं चाह रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आप MBBS में जाओ, आप इंजीनियर बनो, लेकिन वो थ्री इडियट्स वाली मूवी के अकॉर्डिंग, और बच्चा चाहता है कि मुझे वीडियोग्राफर बनना है, बच्चा चाहता है मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे एनिमल्स को क्लिक करना है, वो थ्री इडियट्स वाला। सो कितना ज़रूरी है कि आप अपने योनरा को अगर सिलेक्ट कर लो और उसमें हार्ड वर्क करो, ये कितना ज़रूरी है?
2: अली, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो स्कोप है ना, वो बंदे का होता है, फील्ड का नहीं होता। आपको हर फील्ड में बहुत से नाकाम और बहुत से कामयाब लोग मिल जाएंगे। हमने एतज़ाज़ एहसन की बात की, बहुत से वो कलाएँ हैं जिनका नहीं उस तरह काम चलता। इसी तरह अगर आप सिंगिंग में चले जाएं तो बड़े बड़े नाम भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपका कोई गोल है और आप उस तक पहुँच नहीं पा रहे, तो अपना गोल ना बदलें, अपने एक्शन बदलें जिसकी वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। और ये बात तो अटल है कि गोल विदाउट हार्डवर्क एंड प्लानिंग इज़ जस्ट अ विश। तो दुनिया किसी की विश पे नहीं चलती। आपने जो भी गोल सेट किया, जो भी आपका टारगेट है, आप उसके लिए होमवर्क करें, आप उसमें मेहनत करें। मैं हमेशा एक जो बात कहती होती हूँ ये कि आप जिस भी काम में है ना, आप उसमें पक्के हो जाएं। अगर आप स्वीपर हैं तो आप सबसे अच्छे स्वीपर हों। अगर आप एक शो होस्ट करते हैं, आप सबसे अच्छा शो होस्ट करें। हम लोग जब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ देते हैं, हर वो चीज़ जो आपको मिली है ना, वो उसकी अता है अल्लाह ताला की, क्यों आपको मिली है। तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दें और हर दिन जो है मेहनत करें। हर दिन आपकी कोशिश, आपकी एफर्ट आपको किसी ना किसी मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएगी। मैं अगर आज मुझसे नए बच्चे पूछते हैं ना कि अच्छा तलफ़ुज़ कैसे बेहतर करना है, मवाद कैसे लिखना, कैसे कॉन्टेंट कैसे, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप पहले उस मेहनत के ट्रैक पे पढ़ें जिस पे मैंने, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने पहली तकरीर 2008 में की और आखिरी अगर 2021 में की, 22 में, तो इट्स मोर देन अ डेकेड। एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल एक चीज़ को दिए हों, तो उसके लिए वो शायद चीज़ों को, अल्फाज को ग्रिप करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है, आप उसमें मेहनत करें, क्योंकि वो एक शेर था कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, है अमल लाजमी तकमील आरजू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो इससे कुछ नहीं होना कि आप रंगीन ख्यालात देखते रहें, ये वो। आपको जो भी एक स्किल है ना, जैसे मैं जब बचपन में थी, 3-4 साल की थी, तो मेरी ये वाली चीज़ तो डिक्लेयर हो गई थी कि इसमें जो टैलेंट है वो बोलने का है और इसकी ऑडिटरी सेंस अच्छी है, क्योंकि उस वक्त एक निजी टीवी चैनल आया था और तब रोज़े सर्दियों में आते थे, तो मैं सुबह सुबह उठ के बोलती थी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं और मैं हूँ नवीरा बाबर। तो वो एक बचपन से एक चीज़ थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसी तरफ लगाया जिसमें मेरा शौक था, और उन इतने सालों की एफर्ट्स का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी स्कूलिंग से मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम तक सारी स्कॉलरशिप पे थी। हालांकि ऐसा नहीं होता आमतौर पर। मैंने लाहौर के टॉप क्लास स्कूल में पढ़ा और उस स्कूल ने मुझे खुद अप्रोच किया था ऑन द टैलेंट बेस। मैंने कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, UCP ने जो 2021 की हाईएस्ट स्कॉलरशिप दी थी टैलेंट बेस पे, वो थी 1.2 मिलियन और वो मुझे मिली थी। तो आप अपने टैलेंट में बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत से बच्चे जिनके नंबर मुझसे ज़्यादा होंगे, हो सकता है उनको ये चीज़ें या अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हों। तो इसलिए आपको जो भी एक चीज़ आती है, आप उसमें टिक जाएँ और उसी के हिसाब से आप अपनी तालीम भी मुकम्मल कर लें, तो मुझे लगता है आपके लिए बड़ी विन-विन सिचुएशन होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल नवेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं ये समझता हूँ कि इस सफ़र में अगर आपके पास दो ताकतें हैं, आपके पास दो ऐसी आपके पर्सनालिटी में एलिमेंट्स हैं, एक का नाम सब्र और दूसरी का नाम यकीन, अगर ये दो ताकत आपके पास हैं, यकीन माने मैंने ये चीज़ टेस्ट की है इस फील्ड में। आपका तो बचपन से ही आर्ट से ताल्लुक़ था, मेरा बचपन से आर्ट से ताल्लुक़ नहीं था। मैं APS से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट हूँ, स्टेज से ताल्लुक़ रहा बचपन से, ये प्लेस वगैरह क्लास यूनिवर्सिटी और स्कूल्स वगैरह के कर लेने, यूनिवर्सिटी में भी कर लेने, लेकिन اسپیسیفکلی میرا کوئی آرٹ سے تعلق نہیں تھا، میں نے اپنی محنت سے بیٹ کیا اپنے سے بڑے ایکسپیرینسڈ لوگوں کو جو شاید بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں لگے ہوئے تھے. تو محنت بڑی ضروری ہے اور صبر بڑا ضروری ہے. آپ کہیں کہ آج آپ فیلڈ میں آئیں اور کل آپ فیلڈ کے ایک لیجنڈ سٹار بن جائیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. دوسری جو چیز ہے نا، یقین. یقین بہت بڑی طاقت ہے. توکل تو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اور ہمیں اگر اللہ کی ذات پہ توکل ہے کہ جو ہم ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، جو ہم اپنی محنت پٹ کر رہے ہیں اپنے کام میں، اس کا صلہ ایک نہ ایک دن ہمیں ملے گا. اور یقین مانے وہ ملتا ہے، اپریسیشن کی صورت میں ملتا ہے، وہ ہمارے نام بننے کی صورت میں ملتا ہے، وہ ہمیں ریزلٹس اور آؤٹ پٹ کی صورت میں ملتا ہے. نویرا، لاسٹ میں آپ سے نظم سنوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کوئی ضروری میسج ہمارے سامعین کو دینا چاہیں.
2: جی علی، جیسے آپ نے صبر اور توکل کی بات کی، تو اچھا ہوا میں یہ پوائنٹ شاید مس کر جاتی. اگر میں اپنی جرنی کو ایک لائن میں ڈیفائن کروں، وین ایور آئی لک بیک اور میں دیکھتی ہوں اتنی اچیومنٹس، اتنی ساری چیزیں، تو مائی جرنی واز اے جرنی آف فیتھ. ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے مطلب بہت سے تھک اینڈ تھنس دیکھے. مطلب آپ کو بھی پتہ ہے، جب آپ پروفیشنلی بھی فیلڈ میں آتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیلنجز ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں آپ سے بات کری تھی بریک میں کہ یو سی پی میں بھی 4 سال میں نے بہت محنت کی اپنے سی جی پی اے کو مینٹین کرنے میں، کو کریکولرز میں، باقی چیزوں میں. اس میں مجھے یاد ہے بہت سے ایسے دن تھے جب میں ایموشنلی بھی بہت لو تھی. ہو جاتا ہے، آپ زندگی کے ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہیں، آپ ایموشنلی بھی لو فیل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا بس ختم ہوگی. مجھے لگتا ہے ایک ناشکری کی قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ اچھا نہیں. وہ وقت جب آپ بالکل تھک جاتے ہیں، اس وقت جب آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اٹھ جاتے ہیں نا، وہ ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی اچیومنٹس میرے پاس ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے. کیونکہ سمبڑی لائک می ہو از سوشلی آکورڈ، جو بہت زیادہ سوشل نہیں ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ اچیو کر لینا اور لوگوں کا اس کو اتنا زیادہ جان لینا، وہ آسان چیز نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے علی، کتنے کتنے چیزیں تھیں جو میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ہمت ختم ہو گیا، آپ میری ڈھارس بنا دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس میں سے کیسے نکلوں گی، مجھے مشکل لگ رہا ہے. اور آپ یقین کریں، اس نے میری ڈھارس بھی بندھائی، میری عزت بھی رکھی. اور وہ ساری چیزیں جو آج میں دیکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں یہ ہیومنلی پاسبل نہیں تھا اچیو کرنا. اور مجھے یاد ہے کچھ دن ہوتے ہیں جو آپ کے لیے قبولیت کے ہوتے ہیں، جب میں اپنی ٹرانسکرپٹ لینے آئی تھی اور جب میں نے اس کو دیکھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کے بہت سارا کچھ کرنے کے باوجود، بہت سے لوگوں کے بہت کچھ کہنے کے باوجود، آپ وہ بن نہیں جاتے. اور میرے ابو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو، جس طرح ہوتا ہے نا، آپ جب ریس میں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ہیلمٹ پہنایا جاتا ہے تاکہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ ڈائیورٹ نہ ہوں. تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم نے اپنی اٹینشنز ڈائیورٹ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ، کسی کی بھی محنت اللہ پہ قرض ہوتی ہے اور اللہ وہ قرض نہیں رکھتا. تو تم نے اپنی ڈائریکشن میں بالکل سیدھا چلنا. اور بہت سے لوگوں کی بہت ساری باتیں سننے کے باوجود، آئی میٹ ایوری ون ود دا سیم بگ ہارٹ اینڈ ود دا سیم بگ اسمائل. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو کوئی نہیں ہے جو اس کو ٹال سکے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے My journey was, in short, the journey of faith.
1: Amazing. Faith, یقین اللہ کی ذات پہ بے حد ضروری ہے، اور یہ کوئی مکس باتیں نہیں ہیں یا بہت بڑا کوئی فلسفہ نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہے، اپنے اپنے ٹریک پہ رہنا ہے، اپنے ہی ٹریک پہ محنت کرنی ہے، ڈائیورٹ نہیں ہونا. جب آپ اپنی محنت ڈال لیں اپنے کام میں، اپنی ایفرٹ کمپلیٹلی پٹ کر لیں، تو دین آپ نے اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے، توکل کو پکڑ لینا ہے، اپنی ذات سے باندھ لینا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی.
2: وہ ایک میاں محمد بخش صاحب کا شعر تھا کہ مالی دا کم پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے.
1: بے شک بے شک، دیکھیں اللہ کی ذات کے فیصلے ہوئے ہوئے ہیں. وہ تحریر ہمارے بارے میں لکھ دی گئی ہے کہ آج علی ریڈیو ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا میں بیٹھا ہے، 10 سال بعد علی کہاں ہوگا، یہ اللہ کی ذات نے فیصلہ لکھ دیا ہے. اور اس کے فیصلے پر توکل، اس کے فیصلے پر یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. نویرا، پروگرام ہمارے اختتامی مراحل میں ہے، گزارش کروں گا آپ سے کوئی اچھی سی نظم یا کوئی اچھی سی غزل آپ ہمیں سنا دیں.
2: چونکہ پروگرام میں بہت سیریس نویت کی باتیں ہوئی ہیں، تو اب میں ایک ذرا لائٹ موڈ پہ، ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے تم محبت کرو، اس پہ میں اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہوں گی. کہ اس میں کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ محبت کے کیا رنگ ہیں اور کیوں وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تم محبت کرو، شاہراہوں پہ ہاتھوں میں گجرے لیے، एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, हमने सोचा न था, गुनगुनाते हुए गाड़ियों की तरफ दौड़ते गुलफरोशों की खातिर मोहब्बत करो, तुम मोहब्बत करो, चाय खानों के दरवाज़ों पर मुंतज़िर, बे इरादा तबस्सुम में ख्वाबों के नोहे छुपाती हुई सांवली लड़कियों के लिए, जो ये दरियाफ्त करती हैं कि आप दो लोग हैं। आइए, उस तरफ शोर से हटके एक मेज़ है, तुम मोहब्बत करो। अपनी गाड़ी के शीशों से अकबी नशिस्तों को जासूस नज़रों से तकते हुए ड्राइवरों की ख्याली कहानी को तकमील देने की खातिर मोहब्बत करो। सिग्नलों पर दुआओं की गडरी पे रंगीन लफ्ज़ों के टुकड़े सजाती हुई तेरी जोड़ी सलामत रहे मनमनाती हुई औरतों के लिए तुम मोहब्बत करो। अपने अपने इलाके की बस ढूंढ कर हिजर में मुख्तसर अल्तवा की गरज से उसे छोड़ने के लिए, सिनेमा घर में फिल्मों के नाकाम शो देखने के लिए तुम मोहब्बत करो। सर्द मौसम में कॉफ़ी की प्याली से बोसे चुराने की धुन में मोहब्बत करो। मिलके फूके हुए एक सिगरेट के रंगीन फिल्टर को, परफ्यूम की खाली बोतल को महफूज रखने की खातिर मोहब्बत करो। तुम मोहब्बत करो ताकि दरबार के गिर्द बैठे नजूमी तुम्हारी हथेली पे अपना नसीब आजमाने लगे, और भले इस मोहब्बत से बाहर निकलने में तुमको जमाने लगे, तुम मोहब्बत करो।
1: तुम मोहब्बत करो, बहुत खूबसूरत नवेरा, और यकीन माने बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और जिस अंदाज़े बयां से आपने हमारे सामीन को सुनाया वही एक बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां है। दुआ करता हूँ, दुआ गो हूँ कि जो हमारे सामीन हैं और हमारे मुआशरे में जो लोग हैं, अल्लाह पाक सबको ऐसी बेटियाँ नसीब करे जिनको अपनी फील्ड से ऐसी मोहब्बत हो, अपने काम से ऐसी मोहब्बत हो, और इस तवक्कल से वो फील्ड में आए कि वो कामयाबी को सोचें और समझें कि बस मेरे दो कदम पे ही है, और मैं उनको अपनी मेहनत पे यकीन हो कि मैंने अपनी मेहनत से इस चीज़ को अचीव कर लेना है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके चलते हैं। मेरा एक ही पैगाम है अपने तमाम सामीन के लिए, जो कि मैं तकरीबन अपने हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे देता हूँ, कि अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, अपनी ज़ात पे मेहनत करें, उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए एफ़र्ट्स पुट करें, उनको खुशी दें। बचपन में जैसे उन्होंने आपको पाला है, आपकी माँ ने, आपके बाप ने, जैसे आप सोए होते थे रात को और आप उठते थे रो के और वो भी आपके साथ उठते थे, आज वक्त है उन दिनों को वापस करने का, आपकी मेहनत से, आपकी कामयाबी से, और आपकी अपनी फील्ड से, लगन से ये चीज़ वापस हो सकती है। आप कामयाब होंगे तो सबसे पहले अगर कोई आप पे फख्र करेगा तो आपके माँ बाप होंगे। जब आप अपनी ज़ात के लिए मेहनत पुट करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत पुट करते हैं, तो मुआशरे के लिए रिस्पेक्टिवली मेहनत आ ही जाती है नज़र, आपका मुल्क कामयाब होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हसन को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया की।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जनाब फसाहतुल हसन साहब से, जो कि फाउंडर हैं यूथ एडवोकेसी नेटवर्क के और को फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के। बात हो रही थी सर यूथ पॉलिसी के हवाले से कि यूथ पॉलिसी बनी और इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाई, बल्कि हो ही नहीं पाई उस तरह से, तो खैर क्या। तो उसी पे मजीद बात करना चाहेंगे कि इसकी क्या वजूहत हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ क्यों नहीं होती पॉलिसीज की।
2: सर उसकी दो मैं समझता हूँ वजूहत हैं, जो मेजर वजूहत हैं। एक तो पॉलिटिकल कमिटमेंट, या जो कमिटमेंट होती है अदारे की, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की, ब्यूरोक्रेसी की, एक वो होता है। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, हम लोग सवाल नहीं करते। मैं अभी कल ही एक वर्कशॉप में था, मैंने वो इसी के ऊपर में बात कर रहा था, तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप, वो 30 के करीब या 40 के करीब बच्चे थे, मैंने पूछा कि किस किस को यूथ पॉलिसी का पता है, और वो सब के सब अच्छा काम करने वाले पढ़े लिखे बच्चे थे, और उनमें से सवाए 4 या 5 लोगों के किसी को यूथ पॉलिसी का पता ही नहीं था। तो जब आप देखें, अगर आप, हम बात करते हैं कि भी उसके ऊपर काम होना चाहिए, तो वो काम तभी होगा जब आप आवाज़ उठाएंगे, जब आपको पता होगा, पता होगा तो आप आवाज़ उठाएंगे, जब आपको पता ही नहीं तो आप कैसे आवाज़ उठा सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो इसी प्रोसेस को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो मेरे नज़दीक ये दो बड़ी वजूहत है कि एक तो कमिटमेंट नहीं होती हमारे सरकारी अफसरान की और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनकी, और दूसरा फिर जो जिनके हकूक की बात उस पॉलिसी के अंदर की गई है उनको उसकी अवेयरनेस नहीं है, या वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें बस मिल जाए और हमें कुछ करना ना पड़े।
1: जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस का ज्यादा इशू है, क्योंकि आपको भी याद होगा हम मिलकर ट्रेनिंग भी करवाते रहे डिफरेंट लेवल्स पे, और उसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे तो हमारे यूथ को पता ही नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं।
2: बिल्कुल ऐसा,
1: जब उनको हम वो रीड आउट करवाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये राइट भी है, ये चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें तो पता ही नहीं चीजों का। तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का जब पता ही नहीं होगा तो आप, बात हुई कि एक्सरसाइज कैसे करेंगे और उससे पहले मांगेंगे कैसे कि वो चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। तो अगर यूथ को पता नहीं पॉलिसी के बारे में तो वो कैसे उसको डिमांड करेंगे कि इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए।
2: एग्जैक्टली,
1: तो दैट्स वेरी राइट जी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाहिर है यूथ को एडवोकेसी होना इस वाले से बहुत जरूरी है, उनको पता होना जरूरी है। किसी हद तक मैं समझता हूँ कि शायद यूथ हमारी इग्नोरेंट भी है, किसी हद तक जानबूझ के इग्नोर भी करती है, क्योंकि आपको पता है जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही हैं उसमें लोग कोशिश करते हैं यार अर्निंग की तरफ आओ, कोई ऐसा काम करो जिससे कुछ अर्निंग जनरेट हो, कुछ फाइनेंस बेहतर हो, अपना खर्च उठा सकें, पॉलिसीज को रखो साइड पर। यहाँ तो हमारे मुल्क में होती हैं पॉलिसीज बनती हैं और अप्लाई नहीं होती, तो एक ये फैक्टर भी है।
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें मैं नौजवानों को इसलिए उसका दोष नहीं दूंगा, उसकी वजह यह है कि देखिए वो सूरत हाल उन्होंने खुद पैदा नहीं की जो उनके सर पे पड़ गई है, वो उनकी मजबूरी बन गई है जो भी इस वक्त सूरत हाल है, जो तो वो हाँ। अलबत्ता ये बात जरूर है कि किसी भी लेवल पे हमारे जो नौजवान है या हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कल्चर है सोसाइटी का, या जो मतलब ओवरऑल जो हमारी फैमिली का जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें इनकरेजमेंट नहीं है सवाल पूछने की, अपने हकूक मांगने की, बात करने की। तो जाहिर है जब वो एक फ्रॉम लेवल 1 से ही वो आपको डिस्करेज किया जाता है। आप सोचें कि मुझे याद है कि मैं सबसे नालायक स्टूडेंट था अपने क्लास में, सिर्फ इस वजह से, या ना पसंदीदा स्टूडेंट था, अब ये भी साथ लगा लें, क्योंकि मैं सवाल करता रहा अपने टीचर से यूनिवर्सिटी के अंदर कि भाई ये इस तरह से बात क्यों है, क्योंकि वो सवाल करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो कि हाँ में हाँ मिलाएं। तो इसलिए फिर जाहिर है वो आपकी जो माइंडसेट है वो फिर एक खास उस ढांचे में रह जाता है, तो फिर डेफिनेटली उसी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे हम एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं और हमारे हमसाये चांद पे पहुंच रहे हैं, और हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है जिंदगी में।
1: हम ये सोच रहे हैं कि जन्नत में तो हमने जाना है,
2: हाँ
1: वो चांद पे चले तो क्या हो गया।
2: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: अच्छा एक बात थोड़ा सा इससे हटके मैं करना चाहूंगा, एज फार एज आई नो यू, माशाल्लाह आप बहुत यंग एज से, मतलब यू वर किड, स्कूल गोइंग किड थे जब से आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं सोशल डेवलपमेंट के हवाले से, और आपकी सोशल अवेयरनेस बड़े अर्ली लेवल पे शुरू हो गई थी। तो क्या हमारे आज के जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको क्या रसाई है इन चीज़ों तक, सोशल डेवलपमेंट सोशल अवेयरनेस के हवाले से उनकी रसाई है वहाँ तक क्या?
2: बिल्कुल, मेरे ख्याल में रसाई, मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत भी था कि वो उस वक्त जब मैं छठी जमात में पढ़ता था, पांचवी जमात छठी जमात इस वक्त जब एग्जैक्टली मेरे ख्याल पांचवी जमात में पहला सेशन था, छठी में फिर दूसरा हुआ था हमारा, तो उस वक्त ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। और वो मैं खुशकिस्मत इसलिए कह रहा हूँ खुशकिस्मत क्योंकि वो अदारा हमारे स्कूल में आया, किसी और में जाता तो मैं यहाँ पे आज ना बैठा होता। तो वो डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो शायद अपॉर्चुनिटी सबके पास ना हो, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नौजवानों के पास है जो कि मोबाइल फोन है, जो कि इंटरनेट है। हमारे जमाने में ये नहीं होता था, ठीक है। अब सफर की सहूलियात बहुत आसान है, बहुत ज्यादा है, हम लोग टांगों पे और साइकिलों पे जाते थे, ठीक है। अब ये मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो बसें, मतलब मेरे कहने से मुराद है कि हाँ ठीक है, वो वाली शायद उनके पास अपॉर्चुनिटी ना हो कि लोग उनको बता रहे हों जाके

0: ये काम है, ये मसारे जो आपको करने चाहिए, लेकिन दूसरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको देखते हुए या जिनको जिनसे वो इन्फॉर्मेशन लेके तो अपने अगर उनके अंदर पैशन है तो वो काम कर सकते हैं। अब बहुत आसान है उसकी नस्बत जब हमने शुरू किया इन 1999-2000।
1: बिल्कुल जी, तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि जी आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी है, मोबाइल की फैसिलिटी है और इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक्सेस बहुत ईजी हो गई है स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए, तो इसलिए शायद उस तरह से मसाइल अब नहीं रहे कम्युनिकेशन के जैसे उस वक्त हुआ करते थे। उस वक्त आपको फेस टू फेस मिलना पड़ता था किसी को बताने के लिए, कोई बात समझाने के लिए, अब वो मामला उस तरह से नहीं है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे यूथ को मिल जाती है और यूथ इस हवाले से बहुत हद तक अवेयर भी नजर आती है हमें शायद मामला, और उसकी वजह यही है। उसमें बहुत सा रोल ऐसे सोशल मीडिया भी करते हैं जिनको हम एट टाइम्स नेगेटिव समझ रहे होते हैं, और हमारे यहाँ एक बड़ी आम सोच है कि हम किसी भी चीज को बड़े आराम से अटैक कर देते हैं कि ये जी गलत चीज है, ये नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल जब टीवी आया तो कहा गया जी शैतान का डब्बा है, वीसीआर आया तो कहा गया ये तो हराम है इसको घर में रखना, जो घर में रखे काफिर हो जाएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह से
0: आज उन्हीं लोगों के
1: टीवी चैनल तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जिससे आजकल सोशल मीडिया के कुछ एप्लीकेशन है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उस पर बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन यूथ तक पहुंच सकती है और वो पहुंच भी रही है।
0: बिल्कुल पहुंच
1: रही है, तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है जी इसका। मेरे ख्याल में हर चीज को हमें पॉजिटिव पहलू से भी देखना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है
0: 100%।
1: तो मजीद इस पर बात करेंगे जी इंशाल्लाह आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।